0: सर, एम्बेसडर फायरलैंड आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं।
1: आप उनको अंदर भेज दें।
0: ओके सर।
2: Mr. President.
1: Ambassador. Any news?
2: No.